बोसास तर बोसिमरती पेखे सर्व टटोले पूजस नाही हर हरे नानक नामे अमोल। अष्टपदी जाप ताप ज्ञान सब ध्यान खट शास्त्र सिमरत वख्यान जोग अभ्यास कर्म तर्म किरिया सगल त्याग बन मदे फिरिया अनेक प्रकार किए वो जतना पुन दान हो मैं बो रतना शरीर कटाए हो मैं कर राती वर्तने म करे बो पाती नहीं तुल राम नाम विचार नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार नौ खंड पृथ्वी फिरे चिर जीव महा उदास तपी सर थी वै अगन माहे होमत पुराण कनक असव है वर भूम दान न्योली कर्म करे बो आसन जैन मार्ग संयम अत साधन निमख निमख कर सिर कटावे तो पी हो मैं मैल न जावे हर के नाम समसर कछ नाहे नानक गुरमुख नाम जपत गत पाहे मन कामना तीर्थ दे छूटे गर्भ गुमान न मनते हुटे सोच करे दिन सर रात मन की मैल न तनते जात इस देही को वो साधना करे मन ते कबू न बिख्या टरे जल तो वह बोधे अनीत शुद्ध कहा हुए काची पीत मन हर के नाम की महिमा ऊंच नानक नाम उतरे पतत बहुमूच बहुत सियाणप जमका पौ व्यापै अनक जतन कर त्रिसन ना त्रापै एक अनेक अगन नहीं बुझे कोटु पाव दरगे नहीं सीजे छूटस नाही उब प्याल मोह व्यापे माया जाल अवर करतूत सगली जम डाने गोविंद भजन बिन तिल नहीं माने हर का नाम जपत दुख जाए नानक बोले सहज सुपाए चार पदार्थ जे को मागे साध जना की सेवा लागे जे को अपना दुख मिटावे हर हर नाम हृदय सद गावे जे को अपनी शोभा लोरे साध संग ए हो मैं छोरे जे को जन्म मरण ते डरे साध जना की सरनी परे जिस जन को प्रभु दर्श प्यासा नानक ताके बल बल जासा सगल पुरख में पुरख प्रधान साध संग जाका मिटे अभिमान आपस को जो जाने नीचा सू गनिये सब ते ऊंचा जाका मन हुए सगल की रीना हर हर नाम तिन कट कट जीना मने अपने ते बुरा मिटाना पेख है सगल शिष्ट साजना सुख दुख जन समदिष्टेता नानक पाप पुन नहीं लेपा निरतन को तन तेरो नाओ निथावे को नौ तेरा थाओ निमाने को प्रभ तेरो मान सगल कटा को देवो दान करन करावन हार स्वामी सगल कटा के अंतर जामी अपनी गत मित जानो आपे आपन संग आप प्रभ राते तुमरी उस्तत तुमते होए नानक अवर ना जान सकोए सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म सगल क्रिया में उत्तम क्रिया साध संग दुर्मत मल हिरिया सगल उद्दम में उद्दम फला हर का नाम जपो जी सदा सगल बानी में अमृत बानी हर को जस रसन बखानी।

तो पहला शब्द राग जैतसरी महला नौवां ते ताल चपताल दे अंदर आप जी नूं सुनाउण दा यतन करांगे।

तुर्क दुष्ट सब शय किए हर नाम उचारा तिन आगे कोई ना ठहरे हो तिन आगे को

सब धरती हलचल पाई छाडे कारवार इं ऐसे दंत कलेश में खपियो संसारा दिन बिन सतगुरु को नहीं पहले तनहारा जह ऐसे खड़

ठाकुर अर्जुन पातशाह श्री सुखमणि साहब अंदर कितना उपदेश सुंदर दे रहे। प्रभु का सिमरन सब ते ऊंचा, कहते ने जिहड़ा प्रभु का सिमरन है सारे नाल उच्चा है, पावन है, पवित्र है, श्रेष्ठ है। सिमरन उच्चा क्यों किया गया? कहते ने कि सिमरन उच्चा इस वास्ते है, नाउ तेरा निरंकार है न ले है, नरक ना जाई। नाम जपन वाला सिमरन करन वाला नरकां दे विच नहीं जांदा, सिमरन करन वाला। ते जिहड़ा सिमरन करदा है वह नरकां दा भागी नहीं बन सकता, इसलिए सिमरन सावे नाल उच्चा किया गया। प्रभु का सिमरन सब ते उच्चा,

0: संग हर दर्शन पाया सैन नाई पुतकारिया ओए कर कर सुनिया
1: कर कर किवें सुनिया गया हिर

हम देव पिया मानो के नाम जपण वालियां दे देव, नाम जपण वालियां दे वड्डे जिन्हां नूं सारियां ने सत्कारिया, ऐसे भगत नामदेव ने बचपन दे विच नारायण नूं प्रगट करके दुध पिलाया ते शब्द उचारण होया दूध पियो गोविंदे राये, दूध पियो मेरो मन पतिया, नहीं ता कर को बाप रिसाए। ते कहंदे ने आखर भगती परवान होई नामदेव जी दी, ते दूध पियाए भगत कर गया, नामे हर का दर्शन भया। नामदेव नू हरी दे दर्शन होए ते भगत नामदेव दे प्यार वाला दूध नारायण ने पी के बख्शियां कीतियां। ते इसे तरह भगत नामदेव संतां दा संग करदे, नाम जपदे, परमात्मा नू याद करदे अपनी उम्र बितांदे गए। थोड़े जे वड्डे होए ते उस वक्त दे महान योगी, महान तपीश्वर जिन्हां दा इक पंथ चलदा सी, स्वामी ज्ञानेश्वर जी महाराज, स्वामी ज्ञानेश्वर जी महाराज दे पंथ दे विच दाखल हो गए ते चल पे उन्हां दे

थोड़ी दूर बाहर स्वामी ज्ञानेश्वर जी ने विश्राम कीता। देखिया नेड़े एक खूह दिखाई दे रहा है, मगर उस दे विच पानी कोई दिखाई नहीं देंदा। खूह ते है मगर पानी कोई नहीं। ते ज्ञानेश्वर जी महाराज ने सोचिया, देखिया भाई ए मेरे नाल जो चले

तेरी नारायण ने सुन लई। आइंदा समय विच जेड़े भी इस राह तो गुजरन गे ओ अपनी प्यास तेरी अरदास दी शक्ति द्वारा बुझाया करनगे। नामदेव ने शुकराना कीता नारायण दा, पानी पीता प्यास बुझा करके फिर नारायण

हालांकि मैं द्वारका नगरी पहुंचया हां या नहीं, मगर तू ते मैनू हर जगह दिखाई दे रहा है। कहंदे ने कुजा आमद कुजा रफती कुजा मेरवी, द्वारका नगरी रास बुगोई। कहंदे ने तू ते रास पान वाला है, द्वारका नगरी दा मालिक है,

मैं नारायण नू देख लिया है। ओ नारायण दी पग बड़ी सोहनी है, बड़ा मिठा बोलदा है, मैं ओनू पहचान लिया है। कहंदे ने अस पत गज पत नर है नरिंद, नामे के स्वामी मीर मुकंद। तू ही मुकंद है, तू ही मेरा स्वामी है, तू ही हाथियां ते घोड़ियां दा मालक है, तू ही जितनी ए मनुखता है उना सारिया दा मालक है। ते उस परमात्मा नू पठान दे रूप विच देखदे हुए बार बार

पंच को झगड़ा, झगड़त जन्म गवाया, संसार वल निगाह मार के वेखिए, बस इना पंजा झगड़िया विच ही मनुख सवेर तो शाम तक और रात तो सवेर तक इना ही झगड़िया विच पिया होया। इसनू परमेश्वर दा सिमरन भोली गया है। इसे लई गुरु तेग बहादुर साहब कहिंदे न, अब मैं कौन उपाओ करूं, जे बिद मन को संसा चूके पवनिद पार परों, जन्म पाए किश पलो न कीनो ताते अधिक डरो। इसलिए कबीर जी कहिंदे न, पाई सुख तां उना ही पाया है जिन्हां ने जपया श्री वाहिगुरु। तो इसलिए झूठी माया सब जग बांधिया, झूठी माया ने तां सारे जग नू बनिया, पर रब दे प्यारे अमृत वेले जाग के नाम जपदे हन, सेवा सिमरन करदे हन, अपना जीवन सफल करदे हन। सेजे रमत नैन नहीं पेखो, ए दुख कांस्यों कहोरे, मेरी मत बौरी मैं राम बिसारियो, किन बिद रैन रहोरे, बाप साब का करे लड़ाई, माया सद मतवारी, बड़े भाई के जब संग होती तब हूँ ना प्यारी, कहत कबीर पंच को झगड़ा, झगड़त जन्म गवाया, झूठी माया सब जग बांधिया। कबीर जी कहंदन मैं राम रमत

हे मेरे मालिक, सब तेरे कोलू मंग रहे हैं। ते मंगिया उथों ही जांदा है जिथों दात मिलती हो, जिथों मंग पूरी हो जाए। इसलिए सब तेरे कोलों मंग रहे ने, पर गल कमाल दी है, मंगल वाले बहुतात विच हन जिन्हां दी कोई गिनती नहीं, पर देन वाला इको ही। ते हर मंगते दी मंग वखरी है, ए नहीं कोई कोई मंगदा होवे। जिन्ने मंगण वाले ओनियां ही उन्हां दियां मंगां, पर हे परमात्मा तू देन वाला एक है, कुर्बान हां तेथों जो तू सब दियां मंगां कबूल कर रहे है। हुण गल मंगण दी चली है, ते साहब कहिंदे ने आ हुण विचार इस गल दी भी कर ली है, परमात्मा देन तो इनकार ते नहीं करदा, पर असी मंगना किवें है ते मंगना की है।

ऐसा नहीं कि मंगना माड़ा, हां मंगना चाहिए, पर मंगना किवें है ते मंगना की। हुण साहब गिनती पहले उन्हां दी दस देने कि जो मंग रहे ने, कोई मान मंग रहे, मान दा भाव है इज्जत रिस्पैक्ट, तान मांगो, तान दा भाव है जोर विल पावर ताकत, धन लक्ष्मी सुत दे, कोई धन मंग रहे, मनी माया मंग रहे, सुत कहिंदे ने कोई पुत्र मंग रहे, लक्ष्मी कहिंदे ने कोई स्त्री मंग रहे है। हे परमात्मा, जिन्ने मंगते उन्नियां उन्हां दियां मंगां, हर कोई मंग अलग अलग कर रहे है, पर सब दियां मंगां तू पूरी करी जा रही। मान मांगो, मान इसलिए मंगया क्योंकि मान तो बिना, इज्जत तो बिना जिंदगी अधूरी। संसार विच रिस्पैक्ट इज्जत होनी बड़ी जरूरी। आ तुसी वेख लो, कि निर्धन नू, कमजोर नू कदी किसी ने सन्मानिया नहीं, नेड़े बिठाया नहीं, इसलिए कहिंदे ने मान मंगे आ। फिर तान मांगो, तान कहिंदे ने जोर भी मंगे आ, जो तेरा दिता होया मान बरकरार रह सके, उहनू सांभ सका। धन लक्ष्मी सुत दे, धन भी होना बड़ा जरूरी है। साहबाणी विच कहिंदे ने ना, निर्धन आदर कोई ना दे, लाख जतन करे चित ना धरे। निर्धन नू, गरीब नू कोई आदर नहीं दिंदा, इसलिए इन्हां चीजां दा होना बड़ा जरूरी है। मान मांगो, तान मांगो, धन लक्ष्मी सुत दे, परमात्मा दे धन होवे, लक्ष्मी स्त्री भी चाहीदी है। भगत धन्ना जी कहिंदे ने, घर की गेहन चंगी जन धन्ना लेवे मंगी। घरवाली भी चंगी होनी चाहीदी है, सुगुण सुशील सियाणी होनी चाहीदी।

मंगली है। केसो केसो कुकिए ना सोइए आसार रात दिवस के कुकने कबू को सुने पुकार, कड़ी ते पुकार सुनेगा ना, बस मंगता मंगी जाए, मंग बार बार दोहराई जाए, किवे मंगे बबीहे दी तरह। उस चातक दी नहीं आई जेड़ा बार बार प्यू प्यू करदा रहिंदा, मंगी जांदा ना दिन विंदा ना रात विंदा, वो पुकारा करी जांदा। बबीहा बोल रहा सी, किसी ने आवाज मारी ते आखिया बबीहा क्यों प्या बोलना, कहना एक बूंद चाहिए, एक बूंद ली बोल रही। मंगती का पहला गुण है जी, कहने संसार विच कितना बड़ा समुद्र है, नदियां नाले ने, सागर हन, तालाब हन, वो कितों भी एक घुट पानी का पी के अपनी प्यास बुझा ले। कहने नहीं, ए पानी मेरी प्यास नहीं बुझा सकते, मैनू तो एक बूंद चाहिए, एक बूंद वास्ते मैं इतना प्यू प्यू कर रही हूं। ख्याल करियो जी, एक बूंद जल कारण चातक दुख पावे, एक बूंद वास्ते वो किन्ना बोल ले। कहना जा जाके सौ, आप भी सौ ते मैनू भी सौन दे, क्यों नींद हराम कर रहे। बबीहा नहीं मुड़िया जी, बबीहा बोलता जा रहे। आखिर की होया, वो एक लिव ने आल बोल रहा सी, एक कोलो मंग रहा सी। बाणी विच फैसला है जी,

ताहर ने फल सब खाल गवास मेरे मन हर ऊपर की जे भरवासा जे जाइए ते नाल मेरा स्वामी हर अपनी पैज रखे जनदासा जे अपनी बिरथा कहो अवरा पे ता आगे अपनी बिरथा बहुत कढ़ासा अपनी बिरथा कहो हर अपने स्वामी पे जो तुम्हारे दुख तक काल कटासा सो ऐसा कब छोड़ अपनी बिरथा अवरा पे कहिए

जिंदगी दे जे इतने इतने साल बिता चुके हैं ते की कदी असी अपने शरीर बारे सोचे कि कदी किसी ने अपनी जबान बारे सोचे। अगर परमात्मा ने सानू जबान ना दिती हुंदी ते साडा जीवन कहो जिहा हुंदा। तन दौलत सुख दे समान कितने भी होन, रंग रूप सब कुछ होवे, पर जे जबान नहीं

जिस परमात्मा ने तेनू बोलन की जाच दिती ऐ रसना, फिर उस परमात्मा का सिमरन तू क्यों नहीं कर दी? ए जड़ी साड़ी जुबान है, ए है ते

अपनी जुबान न समझाइए ऐ रसना जे गुरु महापुरुष वो कहंदे ने अकाल पुरख शरीर दे जितने रोम ने इन्हां नूं

जिसने मोढ़े ते कुआड़ा रखे है। इन सत्ता महापुरुषा नु कहन लगा खड़े हो जाओ।

बच्चे दा पहला गुरु उस दी मां हुंदी। जे मां चंगी सिख्या देवे ते बच्चा नेक और चंगा बनेगा, पर जे मां ही अपनी जबान तो माड़ी सिख्या देवेगी ते फिर बच्चे दा जीवन ते बिगड़ेगा। कई बारी मावां ही बच्चियां दा जीवन बिगाड़दियां हन, झूठ बोलन दी आदत पा के, चोरी करन दी, चीज लुकाउण दी आदत पा के। हुण मां ने कहा कोई पाप नहीं कोई पुन नहीं, ते पुत्र ने मन लिया। आर्या समाज दे सत रिखी इन्हां ने तौणा नीवियां कीतियां ते बाल भी कुहाड़ा सिर तों तां चुकिया, लगे हन इन्हां नूं मारन।

तू मेरी हुण पालना कर। पर वाल्मीक तू पाप कर पावे पुण कर, पाप दी कमाई लिया घर विच पावे नेकी दी कमाई लिया, पर अंत वेले मैं तेरी सहायता नहीं कर सकता। घरवाली नूं पुछिया, भलिए लोके तुहाडे वास्ते मैं पाप करना कि अंत वेले तू मेरी सहायता करी। ते साथ संगत घरवाली ने भी इहो गल कही, मेरे माता पिता ने तुहाडे लड़ लाया, तुहाडा फर्ज है मेरी पालना करनी, इत्थे दुख सुख विच मैं तुहाडे नाल हां। पर जद उस दरगाह विच लिखा

सत्संग इस रसना दे नाल माड़ा बोलांगे जीवन माड़ा होवेगा। इस रसना दे नाल उस वाहे गुरु

0: कला खुद कटाने को बस आप ही है।
1: दसम पिता दी ए गल सुन के गुरु तेग बहादुर साहिब पातशाह ने अपनी कुर्बानी दिती ते फिर कहा गे ए सारे हिंदुस्तान वास्ते साहबा ने अपनी कुर्बानी दिती। तिलक जंजू राखा प्रवतांका कीनो बड़ो कलू में साका। ते फिर बड़ा सुंदर करके लिखिया गया है।